भगवान श्री कृष्ण कौन है? भगवान विष्णु का अवतार ही तो है, आठवें अवतार। छह सितंबर 1977 को भगवान श्री सत्य साई बाबा जी ने अपने विद्यार्थियों के बीच में अचानक अपने हाथ से घुमाया, हाथ में एक मणि आ गई, सबको दिखलाई वो मणि, बोले ये वही मणि है जो भगवान श्री कृष्ण अपनी छाती पर धारण करते थे। उस मणि की चमक हजारों सूर्य से ज्यादा थी, रेडियंस वॉज इक्वल टू और मोर देन द रेडियंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सन्स। हृदय में आनंद है, मणि आनंद का प्रतीक है, हृदय से लगी हुई है, हृदय में आनंद है। अपने हृदय में आनंद को स्थापित करो या उसको अनुभव करो, उसकी अनुभूति लो। मणि को यह भी कहा गया कि प्योर कॉन्शियसनेस, विचार कीजिएगा शरीर पर पीतांबर धारण किया, पीला वस्त्र को नीला नहीं किया, आज के लोग काले कपड़े बहुत पहनने, काला भी नहीं किया, केवल पीला। क्या उस समय दूसरे रंग उपलब्ध नहीं थे क्या? ऐसी बात नहीं है। रंग का मतलब है, पीले रंग का मतलब है प्रकृति, प्रकृति का पीला रंग माना गया है और आत्मा का श्याम रंग। भगवान कृष्ण का शरीर पीले रंग में लिपटा हुआ है, अर्थात ये पुण्य आत्मा परमात्मा श्याम रंग जो है वो प्रकृति में है। आज के हम बोलते हैं सेव द नेचर, प्रकृति की रक्षा करो। विचार कीजिएगा पीला रंग जो होता है, ध्यान दीजिएगा, विज्ञान के अनुसार वह आपके मन का संचालन करता है। कभी भी आप पीले कपड़े पहनोगे आपके मन में अच्छे विचार आएंगे और मन का संचालन भी ठीक से होगा। सर पर धारण किया है मोर मुकुट, पहली बात है मोर का पंख क्यों, कबूतर का क्यों नहीं, कौवे का क्यों नहीं? मोर के पंख में तीन रंग होते हैं जो तात्विक राजसिक और तामसिक गुणों के प्रतीक हैं। दूसरी बात, कहा जाता है मोर के अंदर वासना रति भर भी नहीं है, नाचते नाचते वह विभोर हो जाता है, उसकी आंखों से जो आंसू निकल जाते हैं मोरनी उन आंसुओं को ग्रहण कर लेती है और गर्भवती हो जाती है, कहा जाता है ऐसे। कहने का तात्पर्य है भगवान श्री कृष्ण के अंदर कोई वासना नहीं है, वह योगी हैं। वो कह रहे हैं अगर तुम भी अपनी वासनाओं को त्याग कर लो मैं तुम्हें अपने सर पे बिठाने को तैयार हूं। अधरों पर बांसुरी, बांसुरी किससे बनती है? बांस से। बांस क्या होता है? अंदर से खोखला, उसमें कुछ छेद किए जाते हैं, कुछ शेप दी जाती है, बोलते हैं दिस इज द फ्लूट। विचार कीजिएगा बांसुरी कैसे बजती है? भगवान कृष्ण अपने हाथ से लेके अपने होठों से लगा के होठों

से हवा को छोड़ते हैं, हाथों से नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वह आवाज, वह सांस जो आवाज, आवाज जो है एक आवाज का रूप लेके, मेलोडी का रूप लेके, राग का रूप लेके निकलती है, जिसको सुन के हम मोहित हो जाते हैं। गोपियां जलती थी बांसुरी से, कहती थी, हे बांसुरी, तूने कौन सी तपस्या की है जो कान्हा तुझे हमेशा अपने साथ रखते हैं? समझे आप? जलती थी, ईर्ष्यालु हो गई थी। अरे बांसुरी, तू कौन सी तपस्या करी कि कान्हा तुझे अपने पास रखे? बांसुरी एक खोखली लकड़ी है जिसमें कुछ छेद हैं। बांसुरी हमारे शरीर का प्रतीक है। जितने छेद बांसुरी में उतने हमारे शरीर में हैं। आंखें, नाक, कान, मुंह, कहते हैं अगर आप बांसुरी की तरह अपने अंदर खोखलापन ले आए, अपने अंदर से सारी वासनाओं को निकाल दें, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मोद, मद, मत्सर सबको निकाल दें, शर शक्तियों से रिक्त हो जाएं, अहम निकल जाए, तो भगवान आपको अपने होठों से लगाने को तैयार है। अर्थात जो भी आप बोलेंगे, जैसे बांसुरी बजती है उसी प्रकार से आप जो भी बोलेंगे वो आवाज आपकी नहीं, परमात्मा की होगी, भगवान श्री कृष्ण की होगी। अर्थात हिज ब्रेथ विल फ्लो थ्रू यू, अर्थात यू बिकम द डिवाइन इंस्ट्रूमेंट, यू बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गॉड। परमात्मा आपका प्रयोग करेंगे संसार के कल्याण हेतु। भगवान की आवाज, भगवान की सांस, भगवान की वाणी, भगवान के विचार, भगवान की गाथा सब आपके द्वारा संसार में प्रसारित होगी, प्रोवाइडेड हम अपने आप को रिक्त कर लें। विचार कीजिएगा, आज पर गैया घूम रही होती है, गौ माता, गाय का अर्थ है इंद्रियां, भगवान कृष्ण को कोई माखन की कमी नहीं थी घर में, लेकिन चोरी करते थे माखन गोपियों घर जाके। अर्थात गोपियों का हृदय इतना पवित्र था कि कन्हैया उनको प्रसन्न करने हेतु वहां जाते थे। तो विचार कीजिएगा,

श्री कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित करता हो, गोविंद का अर्थ है जो हमारे इंद्रियों का संचालन करता हो, हरे का अर्थ है दुख हरता, मुरारे का अर्थ है जिसने मुर नामक राक्षस को मारा हो। हे नाथ, मैं आपका सेवक हूं, आप मेरे स्वामी हैं। नारायण, मैं

हूँ, आप नारायण हैं प्रभु। वसुदेव वस्तु का अर्थ है प्राण, देव का अर्थ है रक्षा करने वाले, जो हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं।

इस महामंत्र का जब आप जाप करते हैं, अपने नेत्रों को बंद करके परमात्मा का ध्यान लगाते हुए बाल श्री कृष्ण का जैसा बताएगा, जिसकी व्याख्या करी गई, आपके मन में प्रसन्नता आएगी, आनंद की अनुभूति होगी। आप सुध बुध घोर बैठेंगे। मंत्र क्या है एक बार फिर से,

श्री भगवान कृष्ण के अलंकार पे ध्यान देने से ही आपके लिए मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। केवल उनके अलंकार पर ध्यान दीजिए, उसके आंतरिक अर्थ पर ध्यान दीजिए। बार बार मनन करने से आप कृष्ण में हो जाएंगे, तन में आपका